लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों से सजी ये रचना परिवार फिल्म से आपने सुनी। 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, गुलशन पावरा की लिखी रचना। और अब करते हैं, कहते हैं जय जय हिंदुस्तान।

लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के स्वर उसी सजी। ये सुंदर रचना एक ही रास्ता फिल्म से अभी आपने सुनी। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हेमंत कुमार का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। और अब अपने माँ पिता को प्रणाम करते हुए आइए सुनते हैं ये रचना।

आशा भोसले की आवाज से सजी ये रचना आपकी परछाइयां फिल्म से अभी आपने सुनी। 1964 रिलीज ये फिल्म मदन मोहन का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी ये सुंदर रचना।

आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों से सजी ये रचना गीत गाता चल इस फिल्म से आपने सुनी। 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। गीत संगीत रविंद्र जैन का था। इसी रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: चित्त शुद्धि तो।
1: वाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण क्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता सशस्त्र बलों के परिचालन में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर

0: जागते रहो
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से
0: सजग भारत
1: जागरूक भारत
0: सशक्त भारत
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर सजग भारत
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए
2: మీరు వింటున్నారు ఎఫ్ఎం రెయిన్బో రెయిన్బోతో జీవితం రంగుల మాయ మరి సెరబెరల్ పాల్సీ రావడానికి

0: 101.9 जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

दोस्तों एफएम रेनबो 101.9 एफएम रेनबो पर अभी वक्त हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत सेगमेंट का. वेलकम टू दी एक भारत श्रेष्ठ भारत सेगमेंट. दोस्तों आप सुन रहे हैं 101.9 एफएम रेनबो. जैसा मैंने कहा, मेरे यानी आरजे पर्ल के साथ आपकी साथी इस ट्यूसडे की सुनहरी सुबह. और अब वक्त है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक ऐसा सफ़र जहाँ यू नो टिकट की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ज्योग्राफिकल क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और बहुत सारा फन इन्फॉर्मेशन हमारे भारत के अलग अलग अलग अलग प्रांतों को लेकर. तो ये है हमारा खास सेगमेंट एक भारत श्रेष्ठ भारत. और आज हम चल रहे हैं राजस्थान की तरफ. राजस्थान का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है दोस्तों रंग बिरंगी पगड़ियाँ, शाही महल, रेत, रेत ही रेत, यू नो रेत के टीले, ऊंट, यस ऑफ कोर्स, कैमल्स एंड कैमल राइड्स, लोक संगीत. और हाँ, ऐसा खाना जो सिंपल इंग्रेडिएंट से बना हो लेकिन टेस्ट में बिल्कुल रॉयल हो. राजस्थानी क्यूजीन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ का खाना राजस्थान के क्लाइमेट और वहाँ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल से जुड़ा है. और दोस्तों हम सब जानते हैं कि पानी की कमी और डेजर्ट कंडीशंस की वजह से राजस्थान वालों ने अपनी ही एक अलग कुकिंग स्टाइल अपना ली है. और राजस्थानी खाने के इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग मेथड्स का इस्तेमाल ऐसा हुआ है कि खाने को जो लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है, वो तरीके यू नो जो खाने की यू नो शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकती है. और इसीलिए राजस्थान की रसोई में

एक एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग डिशेस मिलती है हमें। सबसे पहले बात करते हैं दाल बाटी चूरमा की। बाटी यानी गेहूं के आटे से बनी हुई बड़ी गोलियां, जो ट्रेडिशनली अंगारों पर या ट्रेडिशनल ओवन में पकाई जाती है। फिर आती है दाल और उसके साथ चूरमा, जो बाटी को घी और मीठे फ्लेवर के साथ हमें एक बिल्कुल अलग कलिनरी अंदाज देता है। और राजस्थान का खाना सिर्फ दाल बाटी चूरमा तक लिमिटेड नहीं है। ऑफ कोर्स दैट इज़ वन मेन फेमस डिश, बट देर इज़ मोर। देर इज़ गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, बाजरे की रोटी, प्याज की कचौरी, मिर्ची वड़ा, घेवर। नाम सुनते ही आई एम श्योर यू मस्ट बी एक्साइटेड टू प्रॉबली रीट्राई दीज डिशेज। दोस्तों, केर सांगरी जो है राजस्थान की ट्रेडिशनल कलिनरी आइडेंटिटी है, उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और केर एक्चुअली एक डेजर्ट है और एक डेजर्ट बेरी है, और सांगरी एक डेजर्ट बीन है। तो दोनों को ट्रेडिशनल स्पाइसेस के साथ पकाया जाता है। और ये डिश राजस्थान के गर्म एनवायरनमेंट के साथ लोकल फूड ट्रेडिशन कैसे परफेक्टली मर्ज होता है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स के लिए बने रहिए। फॉर नाउ लेट्स प्ले अ परफेक्ट सॉन्ग फॉर आज का राजस्थानी मूड।

दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बात हो रही है, राजस्थान की, राजस्थान के खाने की, और राजस्थान का खाना इस बारे में बात हो रही है आज एक भारत श्रेष्ठ भारत पर। तो हमें बात की इस बारे में कि राजस्थान का खाना सिर्फ दाल बाटी चूरमा तक लिमिटेड नहीं है। ऑफ कोर्स दैट इज़ यू नो वन ऑफ द मेन डिशेस ऑफ कोर्स, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ मोर। देर इज़ गट्टे की सब्जी, केर सांगरी जो एक डेजर्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, और बाजरे की रोटी, प्याज की कचौरी, मिर्ची वड़ा, घेवर, नाम इतने सारे हैं, एंड एक से बढ़कर एक सारी डिशेज़ है। और फिर आती है राजस्थानी थाली, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। एक ही प्लेट में इतने सारे रॉयल फ्लेवर्स होते हैं राजस्थानी थाली में। तीखा, मीठा, खट्टा भी होता है, मसालेदार, क्रिस्पी, सॉफ्ट चीज़ें भी, सब कुछ, यानी एक प्रॉपर फ्लेवर फेस्टिवल होता है अगर आप कोई भी राजस्थानी ऑथेंटिक थाली खाने जाओ तो। लेकिन राजस्थान के खाने की असली खूबसूरती सिर्फ उसके टेस्ट में नहीं है, इसके पहले यू नो इसके पीछे टेस्ट के पीछे एक सोच है, एक पूरी कहानी है। ये रेसिपीज़ एक पूरी जनरेशन्स जो होती है, वन आफ्टर वन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है, पहुंचती आ रही है। सो इट्स जेनरेशनल रेसिपीज़, एंड ऑफ कोर्स रेसिपीज़ दैट सूट द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। घर की रसोई से लेकर शादियों और फेस्टिवल तक खाना, यानी सिर्फ खाना नहीं होता राजस्थानी कल्चर में। राजस्थान में खाना जो है उसको एक ट्रेडिशन माना जाता है, एक रिच कल्चरल हेरिटेज माना जाता है। तो आज अगर आप राजस्थान गए बिना राजस्थान का स्वाद लेना चाहते हैं, तो किसी ऑथेंटिक राजस्थानी थाली के सामने बैठ जाइए, उनकी मेहमान नवाजी एंजॉय कीजिए, यू नो हर एक बाइट में इमेजिन कीजिए कि राजस्थान की मिट्टी से नज़दीक है आप, उसकी मेहमान नवाजी को महसूस कर रहे हो आप, उसके रंगों को और उसके रॉयल ट्रेडिशन को महसूस कर रहे हो। क्योंकि भारत की खूबसूरती ही यही है कि हर स्टेट की अपनी बोली, अपने रंग, अपनी परंपरा और अपना स्वाद होता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। और हमारे इसी सेगमेंट में इस पूरे हफ्ते हम राजस्थान के अलग-अलग पहलुओं के बारे में बात करेंगे। आज जैसे हमने खाने की बात की, तो मैं हूँ आरजे पर्ल और आप सुन रहे हैं 101.9 एफएम रेनबो। होप आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत का आज का सेगमेंट पसंद आया हो। इस पूरे हफ्ते एक भारत श्रेष्ठ भारत पर वी विल, लाइक आई सेड, टॉक अबाउट राजस्थान से रिलेटेड हर किस्म की बातें। सो ऑल यू लवली पीपल, कीप एन्जॉइंग दिस ग्रेट गपशप एंड द ग्रेट सॉन्ग्स राइट हियर ऑन 101.9 एफएम रेनबो।

0: రెయిన్బో 101.9.
1: दोस्तों, इसी के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का सेगमेंट समाप्त होता है और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस इन हिंदी फॉलोड बाय न्यूज हेडलाइंस इन इंग्लिश. बने रहिए 101.9 FM रेनबो पर.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप

0: से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टांसावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defence Minister Rajnath Singh today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. The upgraded Slipway 4 along with the new crane will enable the shipyard to build and launch vessels of up to 45,000 DWT. This will increase its capacity to undertake the construction of larger vessels. Fleet Support Ship 1 is the first of 5 fleet support ships being built for the Indian Navy. The 43,500-ton ship entered the waters of the Bay of Bengal 18 months after the commencement of steel cutting. The fleet support ships will provide fuel, water and other supplies to Indian Navy warships at sea, helping them remain deployed for longer periods. The keel laying of Fleet Support Ship 5 marks further progress in the construction of the series. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madurantakam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Tattanchavadi and Puducherry and Rejinagar and Nondigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Nagaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. Opposition parties held a protest march today from Parliament House to the Nirvachan Sadan, headquarters of the Election Commission of India, over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR process and the demand to sack Chief Election Commissioner CEC Ganesh Kumar. However, while heading towards the Election Commission, security personnel stopped them near Akashwani Bhavan. Congress President and Leader of Opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, Leader of the Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, and opposition MPs from other parties staged a sit-in on Parliament Street. The BJP today hit out at the Congress Party, alleging that a sponsored attempt is being made by opposition parties, especially the Congress, to create an atmosphere of anarchy in the country. Talking to media in New Delhi, BJP national spokesperson Sambit Patra said the opposition parties are making derogatory remarks against the country's constitutional bodies in a sponsored manner.
3: For several weeks now, Election Commission has been attacked. From time to time, attacks were made on Indian Army, India's Supreme Court, Hindustan Aeronautics Limited, HAL, Indian Hindus and EVMs. We believe that the Congress Party is still trying to create anarchy and an atmosphere of disorder in the country by using the Election Commission. Before the so-called rally and march take place, it is our responsibility as a political party to accurately place the issue before the people of the country

दोस्तों, गानों से तो आप समझ ही गए होंगे कि यादों की बारात शुरू हो चुका है। दोस्तों, वक्त है कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने चेहरे और बॉलीवुड का वो जादू जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगता है। ये है हमारा खास सेगमेंट यादों की बारात। और आज 6 अक्टूबर है, तो सबसे पहले याद करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार को जिनका नाम ही अपने आप में एक ईरा था। मैं बात कर रही हूँ विनोद खन्ना जी की। हाँ दोस्तों, 6 अक्टूबर 1946 को पैदा हुए विनोद खन्ना, उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी एक बहुत खास जगह बनाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नेगेटिव रोल से की थी, लेकिन धीरे धीरे वो बॉलीवुड के लीडिंग हीरोज़ में शामिल हो गए। उनकी पर्सनालिटी जो है, उनकी आवाज़, उनका कॉन्फिडेंस और उनका स्क्रीन प्रेजेंस, कुछ लोग स्क्रीन पर एक्टिंग करते तो है ज़रूर, ऑफ कोर्स, और कुछ लोग, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर छा जाते हैं। एंड डेफिनेटली विनोद खन्ना जी स्क्रीन पर छा जाने वालों में से एक एक्टर थे। एंड विनोद खन्ना की फिल्मों की लिस्ट देखिए, अमर अकबर एंथनी जिसका गाना अभी अभी आपने सुना, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, चांदनी और बहुत सी यादगार फिल्में। तो आज उन्हें उनके इस जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। यू आर लिसनिंग टू यादों की बारात।

दोस्तों, जुर्म मूवी से आपने सुना वो गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए। कुमार सानू, साधना सरगम की आवाज़। और जुर्म रिलीज हुई थी काफ़ी सालों पहले, विनोद खन्ना की। ये बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में से एक। यादों की बारात पर आपका फिर से स्वागत है। 101.9 FM रेनबो, आप सुन रहे हैं यादों की बारात विथ मी आरजे पर्ल। और स्टूडियो क्लॉक इज टिकिंग अवे एट 12:45 राइट नाउ। और विनोद खन्ना की बात हो और बॉलीवुड के उनके अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। विनोद खन्ना जी का करियर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहा। शुरुआत विलन के रोल से हुई, लेकिन ऑडियंस ने उनमें केवल एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं, उनमें एक हीरो भी देखा। और फिर वो बन गए बॉलीवुड के लीडिंग मेन में से एक। उनकी फिल्म्स में एक्शन भी था, रोमांस भी था, ड्रामा खूब सारा, यस। और एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो स्क्रीन पर बहुत दूर से भी पहचानी जा सकती थी। लेकिन यादों की बारात सिर्फ किसी एक एक्टर की कहानी नहीं होती। कभी-कभी एक एक्टर के साथ हम अपनी खुद की यादें भी जोड़ देते हैं। किसी संडे को टेलीविजन पर देखी हुई किसी एक्टर की फिल्म, पापा के साथ देखा हुआ कोई सीन, घर वालों के साथ सुना हुआ कोई गाना, या फिर कोई वो पुरानी कैसेट या सीडी जो घर में बार बार बजाई जाती है। बस इसी तरह सिनेमा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और अब एक ऐसी ही बॉलीवुड याद को म्यूजिक के जरिए फिर से जिंदा करते हैं यादों की बारात पर।

दोस्तों, यादों की बारात में वक्त को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। सोचिए, साल था 2006। जी हाँ, 2006। मोबाइल फोन्स थे, इंटरनेट था, लेकिन आज जैसी स्ट्रीमिंग दुनिया नहीं थी। फिल्म देखनी है तो थिएटर जाइए या फिर टेलीविजन पर उसके आने का इंतज़ार कीजिए। ये दौर था तब। और 6 अक्टूबर 2006 को बॉलीवुड में एक

साथ 6 हिंदी फिल्म्स रिलीज हुई थी. जी हाँ, 6 फिल्म्स वर रिलीज्ड ऑन दिस डे बैक इन 2006. भूत अंकल, गफला, इकरार बाय चांस, जाना, लेट्स फॉल इन लव, मेरा दिल लेके देखो और जिंदगी रॉक्स. यानी 6 अक्टूबर 2006 बॉलीवुड के लिए काफ़ी बिजी फ्राइडे था. जैकी श्रॉफ की भूत अंकल से लेकर सुष्मिता सेन की जिंदगी रॉक्स तक हर फिल्म का अपना अलग ही यू नो फ्लेवर था. और ऑफकोर्स भूत अंकल वॉज क्वाइट अ कमर्शियल हिट एज वेल, बच्चों को बहुत पसंद आई. और आज 2026 में खड़े होकर देखिए, बस देखिए तो, इन फिल्म्स को रिलीज हुए पूरे 20 साल हो गए हैं. 20 साल, कैन यू इमेजिन दैट दोस्तों, वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है ना. कुछ फिल्में हिट होती है, कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ को देख चुके होते हैं, कुछ थिएटर्स में मिस हो जाती है. थैंकफुली नाउ बिकॉज ऑफ OTT वी कैन कैच दोज मूवीज दैट वी मिस्ड. लेकिन रिलीज का वो वक्त, वो पोस्टर्स, वो सॉन्ग्स, वो थिएटर का एक्साइटमेंट, वो सब अपने आप में एक याद बन जाती है. और शायद इसीलिए बॉलीवुड को हम सिर्फ देखते नहीं हैं, हम बॉलीवुड को जीते हैं, महसूस करते हैं. एंड उसी बात पर यू नो द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर ऑल यू बॉलीवुड लवर्स, बने रहिए मेरे साथ यादों की बारात पर.

जी हाँ, अपने दोस्त, अपने घर वाले हमारे आसपास होते तो ज़रूर है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी लगती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई अपना ऐसा हो जिससे हम बेझिझक बिना फिल्टर की बातें शेयर किया करें, और इसी इमोशन को या ध्यान में रखते हुए कोई होता जिसको अपना कह सकते। किशोर कुमार की आवाज़ में मेरे अपने मूवी से आपने सुना वो गाना, दिले रुबानी सफ़र को करते हैं थोड़ा इमोशन, क्योंकि गाना भी हमने इमोशनल सुना। क्योंकि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वक्त बदलता रहता है, और बहुत सारे एक्टर्स बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, थिएटर से टेलीविज़न, टेलीविज़न से अब OTT स्ट्रीमिंग, पूरी दुनिया बदल चुकी है। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, गाने सुनते ही जो हमारी पुरानी याद है वो वापस आ जाना, पुरानी फिल्म का सीन हमें याद आना, उसे देखकर या सोचकर हम मुस्कुरा दें, और ऑफ कोर्स अपने आप किसी पुराने दौर में पहुंच जाना। यही सारी बातें दिले रुबानी फिल्मों की अगर हम बात करें तो। जी हाँ, लेकिन दिले रुबानी जो है, आज दिले रुबानी पर आई हैव गॉट अ वेरी फिटिंग पर्सन फॉर एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ ह्यूज वे फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। थोटा लक्ष्मी नारायण के बारे में हम बात करेंगे। तो आकाशवाणी हैदराबाद के FM रेनबो पर दिले रुबानी का समय एक ऐसा समय है जहाँ हमारे इस प्यारे सेगमेंट पे हम किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करते हैं जो सबके लिए एक मिसाल है, जिसकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। समवन हु मेड अ डिफरेंस टू सोसाइटी इन अ वेरी सिंपल यू नो वे, ऑन अ पर्सनल लेवल, हु इम्प्रूव्ड सोसाइटी विथ हिज यू नो प्योर डेडिकेशन, हार्ड वर्क और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़। सो बने रहिए मेरे साथ, आज बात होगी थोटा लक्ष्मी नारायण जी की, और उससे पहले ये एक प्यारा सा गाना, दिले रुबानी 101.9 FM रेनबो पर, बने रहिए।

दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा नगमा आपने सुना। रांझना मूवी से आवाजें मधुश्री, चिन्मयी, वैशाली सामंत, आंचल सेठी की, ए सखी ए आर रहमान का कॉम्पोजिशन। बहुत ही प्यारा गाना, जैसा कि मैंने कहा, रांझना मूवी से। दिले रुबानी का वक्त है एफएम रेनबो का एक ऐसा सेगमेंट जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी जी। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में, कहानी तो नहीं कहूँगी लेकिन सच्ची सच है ये। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने अपनी कला को सिर्फ अपनी पहचान नहीं बल्कि समाज सेवा का जरिया भी बनाया है। थोट्टा लक्ष्मी नारायण निर्मल के मशहूर कलाकार हैं जो अपनी पेंटिंग्स के जरिए बच्चों की तालीम, न्यूट्रिशन और रूरल कम्युनिटीज़ के लिए भी योगदान देते रहे हैं। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से फंड रेजिंग कैंपेन में हिस्सा लिया जहां पेंटिंग्स की बिक्री से मिलने वाली जो रकम है वो इस्तेमाल होती है ज़रूरतमंद स्कूल बच्चों के लिए मिड डे मील्स और बहुत सारे एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होती है। बच्चों को उनकी उनका फ़ायदा बहुत होता है, खासकर कि सोसाइटी के उन सेक्शंस में जहाँ पे एजुकेशन कुछ फैमिलीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं है। और उनकी फिलैंथ्रोपी का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू ये है कि वो कला और समाज सेवा को एक साथ लेकर चलते हैं। ये बहुत ही प्यारी सी बात है बिकॉज़ हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास बहुत सारे कलाकार देखते हैं जो अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं, कला से कमाते हैं, और दूसरी तरफ हम समाज सेवक देखते हैं। लेकिन इनके थ्रू, थोटा लक्ष्मी नारायण के थ्रू, हमें इन दोनों का एक मिश्रण देखने मिलता है जहाँ पे अपनी कला को भी वो बढ़ावा देते हैं और उसके थ्रू जो भी फ़ायदा उन्हें होता है फाइनेंशियली वो बच्चों के एडुकेशन में वो डाल देते हैं। यानी एक पेंटिंग सिर्फ दीवार की खूबसूरती को नहीं बढ़ाती बल्कि उनकी पेंटिंग्स किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। सो दैट इज़ द अल्टीमेट यूज़ ऑफ आर्ट, है ना। थोटा लक्ष्मी नारायण की कहानी हमें यही सिखाती है कि हुनर तब और तब ही खूबसूरत बन सकता है और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है जब उसका फ़ायदा दूसरों तक पहुंचने के लिए हो और दूसरे के फ़ायदे के लिए हो। तो निर्मल बॉर्न आर्टिस्ट, 1973 की पैदाइश थी उनकी, थोटा लक्ष्मी नारायण, नोन फॉर कंबाइनिंग ट्रेडिशनल निर्मल आर्ट विथ कंटेम्पररी ट्राइबल इन्फ्लुएंसेस। और 2016-17 में ही कंडक्टेड अ क्राउड फंडिंग कैंपेन जिसमें उनके प्रोसीड्स जो थे पेंटिंग्स के वो मिड डे मील्स फॉर रूरल चिल्ड्रन की तरफ गए और थ्रू द रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन उनकी कैंपेन को अल्टीमेटली 1,37,600 की एक्सीडिंग फंड्स मिले। और उनकी कैंपेन से जो स्ट्रक्चर्ड पेंटिंग परचेस होता है वो हेल्प करता है चिल्ड्रन को एंड रूरल डेवलपमेंट को। एंड हम तो जानते ही हैं कि कितना ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन का भी सेवन करें। तो मिड डे मील्स को फंड करती है उनके सारे अर्निंग्स। और 2025 में थोटा लक्ष्मी नारायण जी ने एक आर्ट फॉर कॉज कैंपेन

के लिए प्लेज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10% उनके हर एक पेंटिंग का जाएगा ग्रीन सोल फाउंडेशन को. ग्रीन सोल फाउंडेशन सपोर्ट करता है बैक टू बैक स्कूल किट्स रूरल स्टूडेंट्स के लिए. तो स्कूल के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे बैग्स, पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स, इन सब चीज़ों को फंड करता है. और उनके फिलैंथ्रोपिक और एजुकेशनल इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो आर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं. यानी इन बच्चों को आर्ट की इम्पोर्टेंस, और अगर उन बच्चों में आर्ट है बाय नेचर, वो ऑलरेडी आर्टिस्ट है या आर्ट की तरफ उनका झुकाव है, तो वो उनको भी बढ़ावा देते हैं विद दिस आर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स. और उन्होंने ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट किया है कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को. फॉर एग्जाम्पल, ही क्रिएटेड द 20th एनिवर्सरी पेंटिंग फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन 2022. तो मोर रिसेंटली उनकी पेंटिंग्स 2026 की अगर बात करें, तो कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन आर्ट इनिशिएटिव में भी यू नो प्रेजेंट की गई थी. एंड एज प्रिडिक्टेड, सारा जो चैरिटेबल फंड रेजिंग था वो कैंसर पेशेंट्स के एड्स के लिए यूज हुआ था. सो रादर देन बीइंग जस्ट नोन एज अ आर्टिस्ट, थोट्टा लक्ष्मी नारायण जी अपियर्स टू यू नो यूज हिज आर्ट एज अ वहीकल फॉर फिलैंथ्रोपी. तो ये बहुत बहुत बहुत खूबसूरत बात है उनकी. और ऐसी कहानियाँ हैं यू नो जो मैं तो कहूँगी कहानी नहीं बट सच्चाई है हमारे आसपास की, जो हमें एग्जाम्पल्स देती है ऐसे लोगों की जो जिंदगी में फ़र्क लाते हैं अपने काम के थ्रू. और इन्हीं लोगों को हम सेलिब्रेट करते हैं दिले रुबानी पर. तो दोस्तों, उनके काम को सलाम, और उनके बारे में आज बातें हुई. स्टे विथ मी आरजे पर्ल ऑन दिले रुबानी, ओनली ऑन 101.59 FM रेनबो. हम कुछ ही देर में एक सेगमेंट का चेंज होगा, कुछ ही देर में मेरे जाने का वक्त होगा, और नेक्स्ट आरजे आएंगे. लेकिन इट्स अ वाइल टिल देन, हमारे पास 20 मिनट ऑफ ग्रेट म्यूजिक एंड ग्रेट टॉक्स अभी भी बाकी है. तो बने रहिए मेरे साथ.

दोस्तों बेफिक्रे मूवी से आपने सुना होगा ना, नशे सी चढ़ गई। अरिजीत सिंह की आवाज़ में बेफिक्र होने में एक फ़ायदा ज़रूर है कि टेंशन कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि केयरलेस हो जाए या इरिस्पॉन्सिबल हो जाए, इसका मतलब यही है कि फालतू का टेंशन ना ले। वेल, 1:55 स्टूडियो क्लॉक पर मेरे जाने का वक्त। दोस्तों आपको दुनिया बदलने के लिए दुनिया भर का इंतज़ार नहीं करना है। अपने आसपास देखिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एक छोटा सा फ़र्क लाइए, क्योंकि किसी और के लिए आपका छोटा सा एफर्ट उनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकता है। और इसी खूबसूरत थॉट के साथ आज के दिले रुबानी को यहीं रुखसत करते हैं। याद रखिए, ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपने लिए क्या हासिल किया। ज़िंदगी का असली सुकून और असली पर्पस शायद इसमें है कि हमने किसी और के लिए क्या आसान बनाया, किसी को क्या उम्मीद दी और किसी को ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा सुकून अगर हम दे पाए तो हम सच में कामयाब है। मैं आरजे पर्ल और आप सुन रहे हैं 101.9 एफएम रेनबो। खुश रहिए, कनेक्टेड रहिए और दिल को हमेशा थोड़ा रुबानी रखिए। मेरे जाने का वक्त है, बट अगले शो की शुरुआत होगी बहुत ही बेहतरीन गाने, बेहतरीन गपशप ऑनलाइन। तो बने रहिए आकाशवाणी हैदराबाद के एफएम रेनबो पर। कीप स्माइलिंग, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। ये आखिरी गाना आपको डेडिकेटेड सभी सुनने वाले एफएम रेनबो के, जो हमारे डेडिकेटेड लिसनर्स हैं।

0: जागते रहो जागते रहो।
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो।
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत
1: जागरूक भारत
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: बातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
1: अफवाहों से,
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति,
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।

0: भारत
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों, आज के नैरंग प्रोग्राम में हम पेश करेंगे सबसे पहले हरफ ताबिंदा, तहरीर होगी मोहतरमा आयशा तजीन सुबहानी की।

बेदारी कायनात सिलसिले में आप सुनेंगे वन प्रोडक्ट वन स्कीम, इस मौजू पर तजम्मुल कान से तकरीर। गीत सुरेले गाता जा, पुराने फिल्मी गीतों से जुड़े आज के कार्यक्रम का टॉपिक होगा अंखियों के झरोकों से। नैरंग प्रोग्राम के आखिर में पयाम शब, जैदी की जबानी आप सुनेंगे।

यहां पर मसालों की ज्यादा तैयार पैदावार होती है और यहां के मसाले बहुत दुनिया में माने जाते हैं, हर जगह जायके आपको इस इलाके के जाते हैं। तो इसी का मतलब यह है कि ODOP के तहत आपको अगर इस जमरे में आप आते हैं तो आपके प्रोडक्ट की, आपकी पैदावार की पहचान बनती है। उसी तरीके से अगर हम नेल्लूर में जाएंगे तो नेल्लूर का चावल है, बासमती चावल है, ये बड़े अहम तरीन चावलों में इस्तेमाल होता है। और नेल्लूर के चावल खास तौर पर साउथ में यानी कि जनूब में हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से चावल की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है, उसी तरह से शुमाली हिंद में चावल की पैदावार कम है। शुमाली हिंद का अगर हम गिजाएं अशिया देखें तो गेहूं आपको हम देखेंगे तो पंजाब का गेहूं, पंजाब के चना ये बड़ा मशहूर है, पंजाब की लस्सी, आप प्रोडक्ट बनाकर उसको आजकल सब बाई प्रोडक्ट पैक में मिल रहे हैं। इस तरीके से अभी ताज़ा प्रोडक्ट के अलावा भी लोग रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स को पैक करके वे बाहर भेज रहे हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स भी रहेंगे तो आप मिल्क के प्रोडक्ट्स को भी बाहर पैक करके बाई प्रोडक्ट्स के तहत भेज सकते हैं। तो इसलिए आपकी अपनी पहचान के लिए आपका अपना प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ अगर मुतारुफ कराया जाए तो इसकी ज्यादा मांग हो सकती है और गवर्नमेंट इसके लिए ज्यादा आपको सहूलतें फराहम करती है। श्रीकाकुलम के अंदर कैशनट बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर होते हैं। इसी तरीके से मिजोरम में मिलेट्स मिलते हैं आपको। गोदावरी के ताल्लुक से देखें तो आप फिश के बाई प्रोडक्ट्स कितने बनते हैं फिश से, इसकी भी बड़ी मशहूर है क्योंकि बाहर जाता है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त हिंदुस्तान में से यहाँ पर जो बीफ सप्लाई होता है वो दुनिया में किसी कंट्री से नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रोडक्ट सप्लायर अगर है तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बॉम्बे है, यहाँ से बीफ बड़े पैमाने पर सप्लाई होता है। तो ये भी जो है इस मुल्क की, इस रियासत के डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान है क्योंकि डॉक्टर्स प्रोटीन के लिए ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए, आपको प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन आपको सबसे ज्यादा रेडमिक्स बीफ में मिलेगा, इसीलिए ये भी पहचान बनता है और ये प्रोडक्ट को भी गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी और सप्लाई दी जाती है। ये और बात है कि आमतौर पर बीफ काटना मना है लेकिन बाय प्रोडक्ट हुकूमत के लिए बैरूनी ममालिक में सप्लाई करना, इसके लिए भी काम चल रहे हैं बड़े पैमाने पर और हुकूमत इसको आपको सहूलतें फराहम कर रही है। लिहाजा जहां जहां पर ब्लैक पॉटरी है, जहां काले जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये आजमगढ़ के हैं। अलीगढ़ के लॉक मशहूर है, मजबूत लॉक है, पूरी दुनिया में अलीगढ़ के लॉक मशहूर माने जाते हैं। आगरा आपको लेदर प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है, मार्बल हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर है। अमोरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, गारमेंट्स बनाता है, इसके लिए ये इलाका मशहूर है और यहाँ के नाम से ही ये चीजें पहचानी जाती है। क्योंकि आपको जब लेदर की बात करते हैं तो आगरा का लेदर है। कश्मीर की बात करेंगे तो हम कश्मीर के गर्म कपड़ों के लिए कश्मीर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दुनिया में जहां हिंदुस्तान के अलावा सर्द ममालिक है वहां पर लोग लेदर का प्रोडक्ट हिंदुस्तान से ही मंगाते हैं, यहाँ से बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है और इसको नाम से भी जाना जाता है कि ये कश्मीर का लेदर है, कश्मीर की शाल है, कश्मीर के बैग्स हैं, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ही अहम तरीन मतारुफ कराए जाते हैं। खासतौर पर सियाह जब हिंदुस्तान का दौरा करते हैं तो यहाँ से ये चीजें खरीद कर खास पर ले जाते हैं और अपने डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। बाज़ाब्ता उसके नीचे नाम लिखते हैं कि ये कहां से खरीद के लाए थे और खरीदने की फोटो भी लगाते हैं। तो यही इसका मकसद है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला और एक पैदावार, इसका मुतारुफ कराना और इसके लिए हिंदुस्तान की पहचान बनाना, स्वदेशी और विदेशी माल के सामने स्वदेशी माल को तरजीह देना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बार बार यही बयान है, हर अपनी तकरीर में वो स्वदेशी माल के लिए सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं और हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं कि अपने माल की पहचान, अपने प्रोडक्ट, अपने तैयार करदा अशिया को स्वदेशी माल के नाम पर फरोख्त किया जाए। दीगर ममालिक में भी स्वदेशी प्रोडक्ट के तौर पे स्वदेशी मनाया जाता है जिसमें आपको स्वदेशी माल ज्यादातर मुतारुफ कराया जाता है। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम और दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स की जानिब से भी स्वदेशी माल की तरजीह दी जाती है। स्वदेशी माल के तहत यही एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के तहत आता है। इसको आप कई एक बोर्ड्स के तहत हर रियासत के अंदर इसके प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स कायम किए गए। अब तेलंगाना के अंदर बात करेंगे तो हम MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ये तारुफ है। खादी बोर्ड यहाँ पर कायम है, नबार्ड यहाँ पर कायम है, एग्रीकल्चर बोर्ड यहाँ पर कायम है, BC कॉरपोरेशन, SC ST कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन के मकासद यही है कि आपके प्रोडक्ट्स आप किस तबके में आते हैं, कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप आते हैं, उसके तहत आप इन कॉरपोरेशन में आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हुए आप अपने तैयार करदा अशिया को मुतारुफ करा सकते हैं। हमारा इस प्रोग्राम के तहत आपको बताने का मकसद यही है कि आप आज भी जागिए, उठिए, हिंदुस्तान की इस बड़ी स्कीम जो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की है इससे आप जुड़िए। अगर आपके पास सही सलाहियतें हैं, अगर आपको इसमें हिम्मत नहीं मिल रही है तो आप शऊर बेदारी प्रोग्राम्स में शिरकत कीजिए। वहां पे आपको तारुफ कराया जाएगा, आपकी इसलाह की जाएगी, आपको मशवरे दिए जाएंगे, आपकी रहनुमाई की जाएगी कि आप किस तरीके से अपने तैयार करदा

0: को मतारुफ कर सकते हैं मार्केट के अंदर। मुतारुफ करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी इंडस्ट्रीज लें, 1 एकड़ 2 एकड़ पर आपको फैक्ट्री लगाएं, बड़े बड़े मशीनरी लगाएं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम वन प्रोडक्ट के तहत आपको अपने ही घर से आप बना सकते हैं। इसकी चंद मिसालें हम आपको अगर देंगे तो जैसा कि आप पानी के बर्तन का एक ढक्कन देखते हैं सिर्फ, या फिर आप जो है नलों के अंदर जो टैप्स के कवर आते हैं वो देखते हैं, आप हर चीज आजकल रिप्लेसमेंट में मिल रही है। प्लास्टिक का दौर चल रहा है, प्लास्टिक की हर अशिया आपको छोटे से एक मशीन पर तैयार की जाती है। एक कमरे में आप अपनी इंडस्ट्री तैयार कर सकते हैं, हजारों की तादाद में आप अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करके मार्केट में ला सकते हैं। एक नल का ढक्कन ही भी हो, आपका टूटी का कैप क्यों ना हो जाओ, आपका वॉचर क्यों ना हो जाओ, ये आपके इलाके से जाना जाता है। इसीलिए आप हर चीज को देखिए, प्रोडक्ट के नाम के साथ जिला का नाम लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए, ज्यादातर खवातीन इसमें आगे आ सकते हैं। घरेलू सनत में आप अपना इजाफा कर सकते हैं। क्रोएशिया की टोपियां मशहूर थे एक जमाने में, जमाने ताइवान की मशहूर टोपी आती थी, अब हिंदुस्तान के अंदर हर घर में खवातीन क्रोएशिया की टोपियां तैयार कर रहे हैं, स्कार्फ्स बन रहे हैं, मास्क बन रहे हैं। मास्क का जमाना आ गया है, हर जगह से आपको मास्क की जरूरत पड़ रही है हर उसमें। तो आप मास्क घरों में तैयार कर सकते हैं बड़ी तादाद में, आप उसका नाम दे सकते हैं, उसका ब्रांड दे सकते हैं, वो हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं। तो बहरहाल हमारा इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आवाम, खासतौर पर खवातीन, नौजवान लड़कियाँ और नौजवान लड़के जो बेरोजगारी की शिकायत करते हुए अपने आप को कमजोर और अपने आप को एहसास से कमतरी में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही मुफीद और फायदामंद है। अगर आप जुड़ते हैं इन स्कीमात के तहत, अगर आप जुड़ के काम करते हैं, अपने सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी अपनी पहचान मार्केट में ला सकते हैं, आपका अपना प्रोडक्ट दुनिया में आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। हमारे से जुड़े रहिए, बेदारी कायनात प्रोग्राम सुनते रहिए, और आए दिन हम कई एक अहम स्कीमात और मालूमाती फराहम करेंगे आपके दरमियान में। इजाजत दीजिए, मोहम्मद जमाल अली खान।
1: बेदारी कायनात सिलसिले में वन प्रोडक्ट वन स्कीम, इस मौजू पर तजम्मुल कास से तकरीर अभी आप सुन रहे थे। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, गीत सुरेले गाता जा। दोस्तों, आज के गीत सुरेले गाता जा का मौजू है आंखियों के झरोकों से। कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती है, जो बात लबों पर नहीं आती वो अक्सर आंखें कह देती हैं। किसी की आंखों में मोहब्बत नजर आती है, किसी में इंतजार, किसी में खुशी, तो किसी में जुदाई का दर्द। आंखों के इन्हीं जज्बात और खामोश इशारों को एक खूबसूरत फिल्म गीत ने बड़ी दिलकशी से अल्फाज और धुन में ढाला है। तो आइए आज गीत सुरेले गाता जा में सुनते हैं एक ऐसा नगमा जिसमें मोहब्बत, एहसास और आंखों की खामोशी जुबान की खूबसूरती की तर्जुमानी करती है। आइए सुने फिल्म आमने सामने से लिया गया ये गीत।

दोस्तों, आज के फिल्मी गीतों का मौजू है आँखियों के झरों कौन से। साथियों, आँखें इंसानी एहसासात और जज्बात का खामोश जवाब होती हैं। दोस्तों, मोहब्बत, एहसास और आँखों की खामोशी कभी कभी जबान की खूबसूरती बन जाती है। तो आइए सुनते हैं ये फिल्मी गीत।

कुछ कहे भी दिल का हाल बयान कर देती हैं। कभी इनमें मोहब्बत की चमक होती है, कभी शरारत की शौकी, कभी इंतज़ार की बेकरारी और कभी जुदाई का दर्द। और जब यही आँखें काली और सियाह हो जाएं, तो इनकी कशिश और भी दिलनशीन महसूस होती है। शायद इसीलिए फिल्मी दुनिया के शायरों ने बारहा आँखों को अपनी शायरी का मौजू बनाया और मौसिकारों ने इनके हुस्न को अपनी धुनों में सजाया।

दोस्तों आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, जो कि पेश किया जाता है रोजाना शब 9:30 बजे से 11 बजे शब तक। और आप जानते हैं कि नए रंग प्रोग्राम का सबसे मकबूल कार्यक्रम है गीत सुरेले गाता चा। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम

पुराने फिल्म गीत आप तक पहुंचाते हैं। इसी फिल्म गीतों के सिलसिले में आज का मौजू है आंखियों के झरोकों से। साथियों, मोहब्बत में जब दिल किसी एक चेहरे को अपनी पूरी दुनिया समझने लगे, तो फिर महबूब की आंखों में ही खुशी, सुकून और जिंदगी की तमाम खूबसूरती नजर आने लगती है। आंखें सिर्फ देखने का वसीला नहीं, बल्कि जज्बात की वो जबान है जो खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। महबूब की एक नजर कभी दिल को करार देती है, तो कभी दुनिया से बेनयास कर देती है। इसी कैफियत को एक खूबसूरत नगमे में बयान किया गया है कि महबूब की आंखों के सिवा इस दुनिया में आखिर रखा क्या है।

दोस्तों, आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं, ये दिल की तर्जमान भी होती हैं। लब खामोश रहें तो भी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। मोहब्बत हो तो आंखों में चमक आ जाती है, इंतज़ार हो तो बेकरारी झलकने लगती है, और दर्द हो तो आंखें खामोशी से आंसुओं की जबान बोलती हैं।

दोस्तों, नगमों का ये हसीन सफ़र अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है, मगर धुनें और यादें दिल में हमेशा गूंजती रहेंगी। आज हमने कभी मोहब्बत की बात की, कभी आँखों के जज्बात को महसूस किया, और कभी इन खूबसूरत गीतों के साथ माजी के हसीन यादों को ताज़ा किया। कहते हैं अच्छा गीत वो होता है जो ख़त्म होने के बाद भी दिल में बसता रहे, और अच्छी याद वो होती है जो वक्त गुजरने के साथ और भी हसीन लगे। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली मुलाकात तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मौसीकी से अपना रिश्ता हमेशा कायम रखिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। तो आइए नए रंग प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं पयाम-ए-शब ज़ैदी की ज़बानी।

हम न कहते थे हाली चुप रहो, हम न कहते थे कि हाली चुप रहो, रास्त गोई में है रुसवाई बहुत। सच बोलना यकीनन अच्छी सिफत है, लेकिन सच के साथ हिकमत, मौका महल और नर्म लहजा भी जरूरी है। हर सच हर जगह और हर वक्त कहना दानिशमंदी नहीं। ऐसी रास्त गोई जो किसी की इस्लाह के बजाय दिल आजारी या फसाद का सबब बने, उसमें एहतियात जरूरी है। सच जरूर बोलें, मगर सच को हिकमत और शायस्तगी के साथ बयान करें, क्योंकि दुरुस्त बात भी गलत अंदाज में कही जाए तो दिल तोड़ सकती है।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर, चंद ही लम्हों में हिंदी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: साथ में

0: الفيروزي. मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी. श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा. श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है.
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है. उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया. इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा. ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए. निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था. आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है. दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था. आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था. नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं. वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की. इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया. 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया. सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है. निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है. मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई. निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी. बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है. 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया. इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी. भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है. श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है. श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बाजार की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ संपादक एके भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: The benchmark domestic indices gain nearly 1%. Sensex surges over 650 points. Nifty settles above 22,750. Cabinet approves establishment of 10,000 crore rupees fund for long-term equity investments in small and medium enterprises. And World Bank raises India's GDP growth projection to 7.1% for the current fiscal.
1: घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स 650 अंक से अधिक बढ़ा. निफ्टी 22,750 के ऊपर बंद हुआ. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है. और वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है.
0: And before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में किस तरह से शेयर बाजार का व्यवहार रहा. घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की बढ़त हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 1% से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की बढ़त हुई.
0: सो बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस रोज नियरली 1% टुडे. द सेंसेक्स सर्ज 685 पॉइंट्स टू क्लोज एट 73,068. द निफ्टी क्लाइम 220 पॉइंट्स टू सेटल एट 22,776. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 1.1% and the small-cap 100 index advanced over 1.5%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में ट्रेंट लगभग 13%, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% से अधिक और हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 3% बढ़े. नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में टेक महिंद्रा 2.3%, टाइटन 1.3% और बजाज फाइनेंस में लगभग 1% की गिरावट आई.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 21 out of 28 sectors edged upwards. Among the top gainers, telecommunication jumped 2.3%, capital goods rose 1.8%, and industrials added 1.6%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt, as well as hospitals, shed around 0.8%. Mid-small private bank fell 0.7% and focused IT dropped 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,816 companies advanced, 1,562 declined and 245 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 12 पैसे कमजोर होकर 96.42 रुपए पर बंद हुआ. भट्टाचार्य जी, शुरुआत करते हैं चर्चा की और जानना चाहेंगे हम आपसे कि आज जो हमने बाजार में बढ़त देखी है लगभग 1% की, क्या उसमें कोई ऐसा प्रमुख कारण रहा या मिले जुले कारण थे जिससे कि बाजार में ये बढ़त हमें देखने को मिली?
2: देखिए, दो कारण साफ नजर आ रहे हैं. पहली बात तो ये है कि पिछले हफ्ते में

0: जो स्टॉक मार्केट का जो रुख देखा उसमें काफी गिरावट हमने देखी, करीबन 2% या 2.5-3% की गिरावट हमने पिछले हफ्ते में देखी
1: जी।
0: और कल उसका रिकवरी हुआ है और आज भी उसका रिकवरी हो रहा है। तो जिसे स्टॉक मार्केट में जिस जो उतराव और चढ़ाव का ये सिलसिला जारी है, और दूसरा कारण ये है कि कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्विमासिक जो मौद्रिक समीक्षा की जो कदम वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसका ऐलान करेगी कल। उसका एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट शायद 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाए, तो उसके कारण जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं उनकी जो वेटेज सेंसेक्स और निफ्टी में काफी अच्छी होती है, उसके लिए स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर को के मार्जिन में बढ़ोतरी होती है, उससे उनका जो इनकम लेवल है वो भी अच्छा होता है। और क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा है, अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उनकी आमदनी में भी काफी इनकम में काफी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि दोनों कारणों के लिए स्टॉक मार्केट में आज एक रिकवरी और एक मौद्रिक नीति की जो एक एक्सपेक्टेशन जो है
1: जी।
0: उसके लिए
2: AKB, we'll come to the MPC later on, but first of all, I'd like to draw your attention to the broader market today. In the mid-cap, we saw 1.1% of an uptick, and in the small-cap, 1.5%, as we all know, over the past 6 months or so, these two sectors, you know, the mid-cap and the small-cap, have bled like anything, and investors are really in a soup. So now, can we say that the green shoots are really coming up, and in the coming times, it will be, you know, growing more and more from now on?
0: You are right that we have seen this duality of the Indian stock market in this way, that while the large cap stocks are not doing that well, but the mid cap and the small cap, which had seen major losses in the last few months, and now they seem to be coming back to life, so to say, and that is also because they are far less expensive than the large cap stocks. So if you are looking at value buying, or if you are an investor, if you want to get into a position in the hope of some quick gains, then large cap is slightly expensive. So therefore, whether it is the domestic institutional investor or whether it is a domestic retail investor, they are zeroing in on the mid-cap companies and small-cap companies with a turnover of maybe 500 crore or so. So that is the sector which is seeing a lot of demand, which is why these mid-cap as well as small-cap indices are doing better. And it is also to be recognized, the point that you made, is that we are seeing far more energy and far more innovative capacity being on display in the small-cap as well as the mid-cap stocks. The gains are far more evident, and they are probably also riding high on wages being almost stagnant. So therefore, their income levels are staying intact. So I think it's a duality of the Indian economy that is reflecting in the gains for the mid cap and the small cap. Plus, of course, the innovative capacity of the mid-cap and the small-cap companies, and they are being not very, very expensive at this point in time. They are all factors that have contributed to the small-cap and the mid-cap doing better than the large-cap.
1: भट्टाचार्य जी, ओवरऑल अगर बढ़त को देखते हुए हम बात करें, ये आज की बात करें, तो आप इस बढ़त को कितना स्थायी देखते हैं आगे आने वाले वक्त के लिए?
0: मैं इस वक्त की जो मार्केट है, मैं इसको स्थायी नहीं देखता, क्योंकि इस वक्त जो वैश्विक वातावरण जो है, जो विश्व में जो

0: वैश्विक स्तर पर
1: दुकान
0: जो भी चल रहा है जी
1: हाँ चल रहा है उसको देखते हुए और भारत में जो उसका एक इम्पैक्ट होगा,
0: जी
1: हालांकि इंडियन इकोनॉमी ने काफी रेजिलियंस दिखाया अभी तक और जो रिफॉर्म का जो पहिया जो है अभी भी चल रहा है यहाँ पे
0: जी
1: और जो तेल की जो शॉक आई थी उसको हमने अभी तक ठीक तरह से संभाल लिया है
0: जी
1: पर आगामी कालों में दिनों में मैं यह नहीं समझता कि कोई सर्टेनिटी से निश्चयता से आप कह सकते हैं कि वो जो इम्पैक्ट जो है उसको आप पूरी तरह से जिस तरह से हमने संभाला है वो संभाल सकेंगे। तो इसीलिए अनिश्चयता का जो वातावरण वो चलता रहेगा और इसीलिए मैं कहूंगा कि आज और कल जो स्टॉक मार्केट में हुआ है उसको आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड से कैसे नहीं बता सकते आप।
2: Right, it could be talking of the rupee here. It has slipped to 96 rupees 42 paise per dollar. Now, with the MPC already happening tomorrow, you know, the outcomes are expected. So, do you see RBI kind of intervening at this stage to kind of arrest the slide?
1: RBI has been in a very, you know, modulated manner, has been intervening in the foreign exchange market. Which is also one of the reasons the government had, the RBI had bolstered its foreign exchange reserve situation by going in for those forex swaps, the FCNRB deposits. So it is in a position to intervene. But my reading is that it is intervening just to maintain the rupees rise and fall in a manner that it doesn't seem to be very volatile. Rupee has depreciated and it is a good thing for India's macroeconomy because our exports have done very well. The August growth of merchandise goods exports have been 19%. In July it was I think 14 or 15%. So I think the rupee being depreciated has been a plus for India's trade sector. Similarly, it has imposed a natural check on needless imports, making imports costlier. So I think the rupee being depreciating just by 12 paisa is something that is not a cause for concern, nor should it be a cause for concern for the RBI's Monetary Policy Committee. On the contrary, it should give them confidence in overall the macroeconomic and external sector stability that we have the reserves to manage a gradual and moderated movement of the rupee versus the US dollar.
2: Right.
0: आइए रुख करते हैं वैश्विक बाजारों की तरफ। आज एशियाई शेयर बाजार में जापान का निकेई लगभग 1% से अधिक बढ़ा, वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक लगभग 1% नीचे आया। भट्टाचार्य जी, हम जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देख रहे हैं जो कि अभी भी उसी तरीके से कमोबेश बरकरार है, इसमें आप जो एशियाई शेयर बाजार है उस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी कि किस तरह से आप इनका प्रदर्शन का अवलोकन कर पा रहे हैं।
1: देखिए, जो एशियन मार्केट्स जिसकी आपने जिक्र की, जापान को कहिए या हैंगसेंग हांगकांग कहिए या सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स को कहिए, सब मार्केट में जो जो उनकी जो एक्सटर्नल सेक्टर की जो जो इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा है। सारे जो मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स, ये मार्केट जापान कहें या सिंगापुर कहें या हांगकांग कहें या साउथ कोरिया कहें
0: जी।
1: उनको वो सारे एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उनका काफी, जैसे भारत भी एनर्जी सेक्टर इंडिपेंडेंस है और इस तरफ इस समय जो एनर्जी मार्केट में जो खलबली मची हुई है उससे जो उनका स्टॉक मार्केट में वो उसी को वो कैप्चर दिखा रहा है कि जो अनसर्टेनिटी और नर्वसनेस दिखा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो हंगामा चल रहा है जो
0: जी।
1: और एक एक स्टेबल एक रेजोल्यूशन ये क्राइसिस का जब तक ना एक रेजोल्यूशन एक निर्णय इस तरफ उस तरफ ना होगा तब तक मैं समझता हूँ एशियाई मार्केट में ये अनस्टेबिलिटी अनिश्चयता का दौर चलता रहेगा।
0: आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये फंड उन छोटे

0: और मध्यम उद्योगों को लंबी अवधि की इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगा जिनमें विकास की अच्छी संभावना है और जो अपने कारोबार को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
1: ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना ये इस ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्टिव। प्रोफेशनली मैनेज होगा, जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स, इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: भट्टाचार्य जी, छोटे बड़े एंटरप्राइजेस को सरकार वैसे भी फंड देती है, लेकिन ये किस तरीके से अलग है?
2: देखिए, जो ये जो है कि ये उनकी जो इक्विटी को ग्रोथ, मतलब इक्विटी का ये मतलब ये हुआ कि अगर जो छोटे और मझले उद्योग जो है उनको इक्विटी की बहुत सख्ती से उनको मिलती है और उनको उनको जिस तरह से उनको इक्विटी के लिए पैसा बटोरना पड़ता है वो काफी कॉस्टली होता है। और ये इससे दो तरह का उनको लाभ होगा। एक तो होगा कि छोटे और मझले उद्योगों को जो इक्विटी के लिए जो पैसा होगा वो कम दामों में, कम इंटरेस्ट कॉस्ट में सरकार से मिलेगी। और दूसरी बात यह है, क्योंकि ये इक्विटी होगा, इसका मतलब ये है कि और मछले छोटे मछले उद्योग जो इक्विटी इस्तेमाल करके नया उद्योग लगाते हैं, उसे उनकी जो नौकरी को बढ़ावा देने की, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में उनको ग्रोथ लाने की उसकी क्षमता जो है वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि वो उतना ऑटोमेटेड नहीं होते हैं। सो उससे जो नौकरी की संख्या बढ़ती है और उसके साथ साथ क्योंकि जो छोटे और मझले उद्योग की जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स की जो शेयर है वो करीबन 48% है, 48% मतलब ऑलमोस्ट जो हमारे सारे देश की जो एक्सपोर्ट्स होती है गुड्स की, उसके आधा जो एक्सपोर्ट जो होता है वो एमएसएमई सेक्टर करता है। तो अगर उस एमएसएमई सेक्टर को इक्विटी एक्सपेंशन के लिए एक सुविधा मिले, उससे एक तरफ नौकरी होती है, दूसरी तरफ उनका एक देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है, और तीसरे तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पिछले 5 सालों में जो कोविड के टाइम में उनको एक धक्का पहुंचा था, सबसे बड़ा धक्का एमएसएमई सेक्टर को मिला था, तो धक्के के बाद जो वो जो उनको पुनर्जीवित करने के लिए ये एक बहुत बड़ा एक उपाय मैं समझता हूँ।
0: जी।
3: And moving on to some other stories, the World Bank has raised its forecast for India's GDP growth in the current financial year to 7.1%, up from 6.6% projected in April. The World Bank said private consumption is likely to remain the main growth driver, while stronger public investment and supportive financial and policy conditions will provide further support. On the supply side, the World Bank noted that the industrial activity has exceeded expectations, with infrastructure and construction goods and electricity generation recording strong growth. AKB, we'd like to understand this growth from 6.6% to 7.1% by the GDP by the World Bank for India's GDP. How huge is this? And of course, the World Bank has also made other observations as well, like the industrial activity has exceeded expectations, infrastructure, construction goods, electricity generation are recording strong growth. How do you see this?
2: Well, when the World Bank looks at the economic growth projections for the current year, it is basing its estimate on

उम्मीद आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 MHz पर और आज आपके संग है अर्पना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर का स्वर था, राजेश रोशन का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने सुना फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। अगला गीत आप सुनेंगे ये भी आनंद बख्शी द्वारा ही लिखा गया है लेकिन संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, स्वर होगा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी और इसके बाद जो अगला गीत आने वाला है वो एक बार फिर से लता जी का स्वर होगा, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत होगा, संगीत है रविंद्र जैन का और फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। तो महबूब की मेहंदी और राम तेरी गंगा मैली से बैक टू बैक दो गीतों का आप आनंद लीजिए। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

11:55 और 50 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों. अगला गीत गीत मेरे मनमीत में आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में. साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत है, खयाम का संगीत है, फिल्म कभी कभी से ये गीत होगा. इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार. अर्पना को दें इजाजत. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना

0: योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी वीबीजी रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के अंतर्गत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी वापस चले गए। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए। स्थिति को बिगड़ने से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जांच की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। विधि विभाग ने बताया कि यह निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद लिया गया। मंत्री परिषद ने 22 सितंबर 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi after the cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistics.

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

अविनाश फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाज में। अमित खन्ना ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। कभी कभी प्यार भी एक नए सवेरे की तरह जिंदगी में उतर आता है, रातों की तन्हाई को अपनी रोशनी से भर देता है, जैसे किसी खामोश दिल को अचानक अपना हमसफर मिल जाए।

तेरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। जब दिल खुशियों से भर जाए तो फिर हर तरफ एक मीठी सी धुन सुनाई देने लगती है। लगता है जैसे जमीन भी गुनगुना रही हो, आसमान भी सुर में सुर मिला रहा हो और पूरा जहान हमारी खुशी में शामिल हो गया हो।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। यादें बड़ी अजीब होती हैं, जितना भुलाना चाहें उतना ही दिल के करीब आती जाती हैं। कोई दूर चला जाए तो उसकी यादें ही साथ रह जाती हैं और वही यादें हर पल दिल को बेचैन करती हैं।

0: सौतन की बेटी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 35 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

शैली शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनता, घर तो अपनों की हंसी, उनकी आवाज और उनके साथ से पूरा होता है। अपने पास हो तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है और उनके बिना खुशियों में भी एक खालीपन सा महसूस होता है। सच ही है, अपनों का साथ ही जिंदगी को मायने देता है, क्योंकि रिश्ते साथ हों तो जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, खूबसूरती से जी जाती है।

साथ साथ फिल्म का गाना आपने सुना, जगजीत सिंह की आवाज में, जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। कभी किसी का साथ जिंदगी में ऐसी ठंडी छांव बन जाता है जहां दुनिया की सारी थकान आकर ठहर जाती है। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, अगर कोई अपना साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है।

लहू के दो रंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। कभी कभी किसी अपने की एक मुस्कान ही पूरी महफिल को रोशन कर देती है। उसकी मौजूदगी में जैसे मौसम भी बदल जाता है, दिल में बहार उतर आती है और हर हर पल थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 49 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

कलाकार फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया आनंद बख्शी ने, माफ कीजिएगा कल्याण जी आनंद जी ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी वीबीजी रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कमियों को दूर करना और सेवा क्षेत्र का व्यापक सूचकांक तैयार करना है। मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजन के तौर पर स्थापित हो चुका है और देश के सकल मूल्य वर्धन में आधे से ज्यादा योगदान देता है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। कल 40 वार्ड के लिए वोट की गिनती हुई। बीजेपी ने इनमें से 3 वार्ड में जीत दर्ज की। इसके अलावा वार्ड नंबर 9 और 20 से बीजेपी के 2 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस तरह 42 सदस्यीय नगर निगम में बीजेपी की कुल सीट की संख्या 32 हो गई है। इसके साथ ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। वहीं 6 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। कांग्रेस और असम गण परिषद ने 2-2 वार्ड में जीत दर्ज की। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने तथा पुलिस के निर्देश का पालन करने की अपील की गई है। मेघालय सरकार का वाणिज्य उद्योग विभाग कल से 8 अक्टूबर से शिलांग में रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य मेघालय के छोटे और मझोले कारोबारियों को देश विदेश के खरीदारों से जोड़ना है। मेघालय में करीब 98,000 पंजीकृत एमएसएमई हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय कारोबारियों और खरीदारों के बीच सीधे व्यापारिक संपर्क का मौका मिलेगा। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi yesterday after the Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistics planning in the country. Mr. Vaishnaw said the Cabinet has also given its note to the establishment of a 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises.
1: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
3: अ 10,000 करोड़ रुपीस एमएसएमई ग्रोथ फंड विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू एमएसएमईज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड एमएसएमईज विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
1: मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एमएसएमईज जिनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही है.
2: Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi made the statement while interacting with members of the Global System for Mobile Communications Association, GSMA board, ahead of the India Mobile Congress scheduled to be held from today until the 10th of this month in New Delhi. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticized the Congress party and leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, for repeatedly targeting the Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to the media in New Delhi, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate. Earlier in the day, opposition parties held a protest march from Parliament House to the headquarters of the Election Commission of India in the national capital over alleged irregularities in the special intensive revision process and demanded the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Later, leader of the opposition in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi, along with party leader Priyanka Gandhi Vadra and other supporters, entered Akashvani Bhavan and staged a protest on the premises. With regard to the opposition's protest, the Election Commission said that no political party had sought an appointment to meet it before 4 p.m. In a statement, the commission said around 4 p.m. Delhi police informed the commission that a delegation of about 240 MPs led by Rahul Gandhi wanted to meet the commission and submit a memorandum at Parliament House Annex. The ECI called the request unusual and declined it and said that as per its protocol, such meetings are held only at the commission's premises. With regard to the yesterday's opposition march, Delhi police said that no permission was sought or granted for the opposition march. It said in the view of this, Section 163 of the BNSS was imposed in New Delhi and protesters were asked to disperse. Delhi police said to control the situation and maintain law and order, it detained the protesters in accordance with the law. The police said that the situation is being monitored and people have been urged to maintain peace and follow police instructions. Central Bureau of Investigation, CBI, has registered an FIR against Punjab Chief Minister's OSD, Rajbir Ghumman, and his associates over in a case of cash for transfers, manipulation of postings of IAS and IPS officers, and other corruption charges. The agency also conducted raids at 8 premises across Punjab. The action follows a Punjab and Haryana High Court order transferring the related corruption case from the Enforcement Directorate to the CBI. India has strongly condemned the attacks on commercial vessels in the Black Sea and Strait of Hormuz, in which 2 foreign seafarers were killed and several crew members, including Indian nationals, were injured. New Delhi has called for an immediate end to attacks on commercial shipping and urged dialogue and diplomacy to restore safe navigation through international waterways. In men's cricket, India defeated West Indies by 8 wickets in the first of 5 match T20 international series in Lucknow to take a 1-0 lead in the 5-match series. Chasing a target of 172 runs, India comfortably overhauled the score in 14.4 overs. With this win, India now leads the 5-match series 1-0. The second match of the series will be played in Ranchi on Friday. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब जरा ठहरिए, कुछ पल अपने नाम कीजिए, क्योंकि जब दिल को सुकून चाहिए तो गीतों से बेहतर साथी भला कौन। तो आइए यादों की नर्म रोशनी और सुरीली धुनों के साथ सजाते हैं महफिल गीत सुहाने, जहां हर नगमा दिल को छूता है और हर धुन कोई खूबसूरत कहानी कहती है।

काइट फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जब सपनों को किसी अपने का साथ मिल जाए तो हर राह खूबसूरत लगने लगती है। मंजिल की चिंता नहीं रहती, बस इतना यकीन होता है कि सफर में हम अकेले नहीं हैं।

तेरे घर के सामने, इस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। नशीली रात है, दिल बेकरार है और बस एक ही सवाल बार बार दिल में उठ रहा है, आखिर तुम हो कहाँ? नींद से दूर ये दीवाना दिल तुम्हें ढूंढता है और कोई जवाब मानने को तैयार ही नहीं।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत जब हद से गुजर जाए तो दिल की आवाज दुनिया से छुपाए नहीं छुपती, और फिर इश्क का इजहार भी एक जुनून बन जाता है।

झुमरू फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया किशोर कुमार ने ही। कभी कभी जिंदगी की राह में ऐसा मोड़ आता है जब भीड़ के बीच भी इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, न कोई अपना हमदम, न दिल को थामने वाला कोई सहारा, बस यादें साथ रह जाती हैं और खामोशी दिल की बात कहती है।

अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

0: हुआ है 1:33 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बस रे

सन्नाटा फिल्म का ये गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में, गुलजार ने इसे लिखा और संगीत भी दिया हेमंत कुमार ने। नहीं, उदास नहीं, बस एक चुप सी लगी है, शायद दिल आज कुछ कहना नहीं बस कुछ महसूस करना चाहता है। ऐसे ही खामोश पलों में गीत हमारे सबसे करीब आ जाते हैं, बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे बस दिल की बात समझ लेते हैं।

साथी फिल्म का गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। मोहब्बत जब दिल में पूरी तरह उतर जाती है तो फिर हर खुशी उसी से जुड़ी लगती है। नजरों को जो सबसे हसीन लगे वही प्यार वही बहार।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। कभी कभी मोहब्बत में दिल को ना कोई मंजिल याद रहती है ना कोई रास्ता, बस एक नाम जुबां पर रहता है और इंसान उसी पुकार में आगे बढ़ता चला जाता है।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। चांद फिर निकला, रात फिर सजी, मगर जिसका इंतजार था वही नहीं आया। कुछ रातें चांदनी से नहीं किसी की याद से रोशन होती हैं, और जब वो साथ ना हो तो पूरी रात भी अधूरी सी लगती है।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 38 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी वीबीजी रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के अंतर्गत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने तथा पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जांच की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। विधि विभाग ने बताया कि ये निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद लिया गया। मंत्रिपरिषद ने 22 सितंबर 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

कटी पतंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज है, दिल कहता है इससे दूर रहो, लेकिन महबूब का नाम आते ही सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। प्यार में कभी दिल हारने का डर है, कभी दुनिया की बातों का, और फिर भी दिल है कि मानता ही नहीं।

दाग फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इश्क में जब दिल किसी के नाम की हाँ कर दे तो फिर दुनिया की ना भी कहाँ रोक पाती है। जमाना कुछ भी कहे, दिल तो अपना फैसला कर चुका है। हाथ थाम लिया है तो अब साथ निभाना है, चाहे राह आसान हो या थोड़ी मुश्किल।

हाथी मेरे साथी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जब हवा भी मस्त हो, दिल भी खुश हो और साथ हो किसी अपने का, तो जिंदगी अपने आप एक खूबसूरत गीत बन जाती है। फिर ना बीते कल की चिंता, ना आने वाले कल की फिक्र, बस आज के इस पल को हंसते खेलते जीते जाइए।

मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 56 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

शर्मीली फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिंदगी की राह में कुछ मुलाकातें हमेशा के लिए याद बन जाती हैं। जैसे फूल खिलते हैं और फिर बिखर जाते हैं, वैसे ही कुछ दिल मिलते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। लेकिन शायद इन मुलाकातों की खूबसूरती इसी में है कि उनके बीच जाने के बाद भी उनकी खुशबू यादों में बनी रहे।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। मोहब्बत में कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिनका कोई वक्त तय नहीं होता, जब बस दिल की एक ही पुकार होती है, कब पूरी होगी ये आस, कब लौटेगा वो प्यार जिसका मन को बरसों से इंतजार है।

आराधना फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। किसी के आने का इंतजार भी कितना हसीन होता है। हर आहट पर लगता है शायद वही आए हैं। हर मौसम में उनकी कमी और भी महसूस होती है। रुत मस्तानी है, जिंदगी अपनी रफ्तार से बीती जा रही है, मगर दिल की एक ही पुकार है, आखिर वो घड़ी कब आएगी।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही वंदना चुग के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी वीबीजी रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है।

0: 5 अक्टूबर तक मंडियों में करीब 7,35,000 मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार खरीद एजेंसियां अब तक 2,57,000 मीट्रिक टन धान खरीद चुकी हैं। केंद्र सरकार ने इस साल हरियाणा से 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री के आधार पर 31.8% बढ़कर 25 लाख से अधिक इकाई हो गई है। सितंबर में सामान्य वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 32.1% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.6% तक बढ़ी। इस दौरान दो पहिया वाहनों की बिक्री में 33% और तीन पहिया वाहनों की बिक्री में 22% की वृद्धि हुई। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के प्रबंध किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi after the Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistics planning in the country. Mr. Vaishnaw said that the Cabinet has also given its nod to the establishment of a 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises.
2: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
3: 10,000 करोड़ रुपीस एमएसएमई ग्रोथ फंड विल बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू एमएसएमईज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड एमएसएमईज विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
2: मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एमएसएमईज जिनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही है।
1: Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi made the statement while interacting with members of the Global System for Mobile Communications Association, GSMA board, ahead of the India Mobile Congress, scheduled to be held from today until the 10th of this month in New Delhi. The government has notified the schedule of permissible works under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act 2025, providing for 375 permissible works under the new Rural Works Framework. The Ministry of Rural Development said that the new schedule of works have been reorganized around 4 thematic pillars, including water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure and special works for extreme weather events and disaster preparedness. With regard to the opposition protest, the Election Commission said that no political party had sought an appointment to meet it before 4 p.m. In a statement, the Commission said that around 4 p.m, Delhi police informed the Commission that a delegation of about 240 MPs led by Rahul Gandhi wanted to meet the Commission and a summit, a memorandum at the Parliament House Annex. The ECI called the request unusual

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, अब समय हो चला है 3:11 और 3 सेकंड और कार्यक्रम हमराही। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनते हैं युगल गीत। और अब इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी रूठना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और फिर रूठने से मिलता भी क्या है, मान जाना चाहिए अगर रूठ भी जाए तो। तेरे घर के सामने फिल्म से आपने गीत सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीत SD परमन का। अगला गीत आप सुनेंगे माया फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

जब तस्वीर दिल में बस जाती है तो कहां निकलती है। और अब अगला गीत आपके लिए प्यार का मौसम फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

ज्वारी फिल्म से ये गीत था, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे जिगरी दोस्त फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। आनंद बख्शी की बोल है और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप जरूर गीतों का आनंद उठा रहे होंगे। अगला गीत आप सुनेंगे महबूब की मेहंदी फिल्म से, गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफीक की आवाज में है। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपकी दोस्त कार्यक्रम हमराही में युगल गीतों के साथ वंदना चुग। और अब अगला गीत सुन लेते हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा भी लेते हैं।

एक बार मुस्कुरा दो। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, आशा भोसले और मुकेश का गाया हुआ। SH बिहारी के बोल थे और धुन तैयार की थी OP नायर ने। अगला गीत आप सुनेंगे गीत फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया हुआ। हसरा जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे अपना देश फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत आर डी बर्मन का।

0: और दोस्तों, अब कार्यक्रम के आखिर में आन मिलो सजना फिल्म से ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया।
1: फिर कब मिलोगे?
2: जब तुम कहोगे
1: जुम्मे रात को।
2: हाँ हाँ आधी रात को।
1: कहाँ?

पर हम भी चलते हैं। इस गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दोस्तों को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी वीबीजी रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन काम को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्ययोजना का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कमियों को दूर कर सेवा क्षेत्र का व्यापक सूचकांक तैयार करना है। मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजन के तौर पर स्थापित हो चुका है और देश के सकल मूल्य वर्धन में आधे से ज्यादा योगदान देता है। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के अंतर्गत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई

कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने तथा पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जांच की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। 4:11 और 6 सेकंड हुए हैं। समय है अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों को सुनवाने का और सभी दोस्तों को वंदना चूक का प्यार भरा नमस्कार।

मिर्जा गालिब। फिल्म से अभी आपने गीत सुना सुधा मल्होत्रा का गाया हुआ, शकील बदायूं की रचना थी और गुलाम मोहम्मद का संगीत। कुछ मीठी सी ठंडक है आज इन हवाओं में, कुछ मीठी सी ठंडक है आज इन हवाओं में, शायद मौसम भी किसी की याद में सर्द है।

मॉडर्न गर्ल, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गुलशन बावरा ने गीत को लिखा था और संगीत रवि का था। अगला गीत आप सुनेंगे इशारा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

मेरी सूरत तेरी आंखें, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ, शैलेंद्र की रचना थी और आरडी बर्मन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, मेरे सनम फिल्म से।

परवरिश। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और दत्ताराम वाडेकर का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे अमर फिल्म से, लता मंगेशकर का गाया हुआ है, शकील बदायूनी की रचना है और संगीत नौशाद का।

अब अगला गीत आप सुनेंगे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त का गाया हुआ।

और अगला गीत आप सुनेंगे पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ, कमल अमरोही की रचना है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

कार्यक्रम में आखिरी गीत आप सुनेंगे दो रास्ते फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चुग को दीजिए इस कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाजत और जुड़े रहिएगा FM गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े अयोध्या से कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश सह प्रभारी डॉ मेधा कुलकर्णी लखनऊ के हजरतगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल से जुड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद से कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह प्राधिकरण देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का यह फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी वापस चले गए। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए। स्थिति को बिगड़ने से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जांच की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना भी इसके उद्देश्य में है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कमियों को दूर करना और सेवा क्षेत्र का व्यापक सूचकांक तैयार करना है। मंत्रालय ने कहा है कि सेवा क्षेत्र भारत की

भोर सुहानी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ और इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

जिसे ईश्वर पर अटल विश्वास है और उसे मालूम है कि ईश्वर दर्शन देंगे तो वो जरूर देंगे, क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है। और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने इसी फिल्म से गीत सुना। इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना थी और सोनिक ओमी का संगीत। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं आते। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कश्मकश चल रही है और चलती ही रहती है। बस हमें उन पलों से निकलना होता है जहां हम अधीर हो जाते हैं।

पाप को जलाकर राख कर दूंगा। इस फिल्म से आपने ये रचना सुनी किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। अगला गीत जीने की राह फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अब अगला गीत सागर फिल्म से आप सुनेंगे एसवी बालासुब्रमण्यम की आवाज में। जावेद अख्तर ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

सच में दोस्तों, ये प्यार ही तो है जो हमें एक दूसरे से बांध कर रखता है। सागर फिल्म से रचना आपने सुनी एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में। जावेद अख्तर ने गीत को लिखा था और आरडी बर्मन ने धुन को बनाया था। और अब अगला गीत सीमा फिल्म से मन्ना डे का गाया हुआ।